फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: This is Sunrise Nightlife.
1: मेहरबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोह

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं आ।

माता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा। सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Raw One on the UK's biggest Asia mix.
1: Baby, let me see it.
0: Tesha, Jalebi Baby. To get in that sunshine vibe, Blue Hair Pani Pani, in case you're not already in the sunshine vibe. And King and Nick Jonas, Man Meri Jaan, still to come.
2: The Sunrise Breakfast Show, brought to you by Wellman and Wellwoman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.
3: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में
4: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है
5: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय
6: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर
7: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है
6: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में
3: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707 स्काई ग्लास 714 वर्जन मीडिया 809 BT 394 एंड Z5 ऐप
2: Sunrise Breakfast Show, brought to you by Wellman and Wellwoman Supplements, for men and for women, for whatever life throws at you. From Vitabiotics, the UK's number one vitamin company, available from pharmacies, supermarkets and Vitabiotics.com. For number one verification, see Vitabiotics.com.

0: गुड मॉर्निंग, इट्स अ वेडनेसडे, इट्स द 24th ऑफ जून. आप सुन रहे हैं दुनिया का मशहूर एशियन रेडियो स्टेशन द यूकेस हॉटेस्ट एशियन मिक्स सनराइज रेडियो. योर टू सॉन्ग्स बैक टू बैक दिस आवर, साथिया एंड ओ सजनी रे. एंजॉय.
1: Back-to-back songs with the egg-free cake box, now open in two locations in Belfast. Whatever you got to say, say it with Cake from Cake Box. Choose, click and collect in as little as 1 hour at cakebox.com. Plus, now shop Ambala Sweets in-store. Order online at cakebox.com or in-store today.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा.
1: This is the UK's biggest Asian mix. This is Sunrise.

रॉबिन हुड मानते हैं, क्योंकि वो अमीरों से लेता तो है पर गरीबों को देता कुछ नहीं।

0: Listener's Choice brought to you by Colors TV.
1: बहुत हुआ setback, अब होगा मेरा comeback.
2: A dream waiting to be revived. Watch Dr. RMB Monday to Friday 7 PM only on Colors TV.
0: The Gold Rate with Sunrise Radio on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, worldwide via sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, and for the Radio Player and Nation Player app. Stay connected to your favorite Sunrise Radio 24 hours a day, 7 days a week.
3: Gold is trading at £98.03 per gram. All right, let's get another listen to this trio.
4: हाँ ठीक है, आप अपना आदमी भेज दो, डील वहाँ हो जाएगी. अगले शनिवार रात के 9 बजे क्वींस नाइट क्लब. हाँ अच्छा जी,
5: जिब्रान एक बहुत बड़ी डील करने वाला है. अगर हम उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लेते हैं तो कम से कम गुनाह की दुनिया का एक अध्याय खत्म हो जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम ये उठती है कि उसके प्राइवेट नाइट क्लब में जाएं कैसे.
6: नहीं, मेरी तरफ ऐसे मत देखिए. पहले आप मुझे वहाँ बलि की बकरी बना बलि का बकरा बनाकर भेजेंगे, और बाद में जब मेरी बैंड बजने वाली होगी तो हीरो वाली एंट्री मारेंगे.
2: The hit of the hour on Sunrise Radio, brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.
3: Few more shout-outs. Sagoon, you have the right answer. DJ in Warrington, yes, correct. Suraj in Edmonton, correct. Sarah in Glasgow, yeah, got it, yeah, got it. Shama in Glasgow, right answer. And more names on the way.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।